कोई चारा नहीं, कोई नहीं बचा सकता। ते उस मक्खन शाह ने अपना मुंह हाथ धोता है ते कहन लगा टिक जाओ, नेत्र बंद करके एकाग्र चित होके जपजी साहिब दा पाठ कीता है, ध्यान गुरु नानक दे चरणा दा टिकाया है। ते कहिंदे ने मेरे गुरु नानक दी कृपा नाल जपजी साहिब दा श्लोक पढ़न दी देर सी मक्खन शाह दा बेड़ा डोलदा होया किनारे ते लगन लगा। उथे लिखते ने विद्वान, कहन लगे कर चित एकाग्र जप को पढ़ा, पुन सतगुरु का किया ध्यान, मिटे भरम मन गुर ले पछाण। ते उथे उन्हें कहा सी दाता बड़े दिन हो गए ने किरत करदिया, मैं आवांगा दसवंत दी माया भेट करनी है। मक्खन शाह पहला बाबे बकाले नहीं आया, पहला दिल्ली पहुंचे है। ते जदो पुछया गुरु नानक साहिब दी जोत, ते उत्तर मिलिया मक्खन शाह गुरु हर कृष्ण साहिब प्रापुर प्याना कर गए ने, ते एक शब्द कह के गए ने बाबा बसे ग्रहां बकाले। मक्खन शाह नू यकीन है जो गुरु ने बचन कह सतगुरु उसे बकाले दी धरती ते विराजमान ने। अज मक्खन शाह जदो वाहो दाही पहुंचे 500 एदा सिपाही शस्त्र बद जेड़ा सी एदे नाल, एदी घरवाली एदे पुत्र नाल ने। ते जदो पता लगा मक्खन शाह आ गया ते सारिया मसंदा ने पखंडिया ने अपना जाल ओदे वल बुनना शुरू कर दिता। मक्खन शाह नू सारे कहिंदे ने आ गुरु नानक। मक्खन शाह दे मन नू पहली एक ठोकर लगी, मना गुरु नानक दाता है मंगता नहीं, जेड़े लोग अगे हो के मेनू प्रेरदे ने ए तां भिखारियां दी तरह मंगदे पए ने, ओदे दर ते तां शहनशाह भिखारी बने ने, ते इन्हे शहनशाह नू भिखारी बना दिता। कहन लगे मक्खन शाह ने एक गल कही, कहिंदा सतगुरु मैनू पता नहीं तू किथे वे, पर जिवें डूबदे बेड़े तू किनारे लाए ने, तू किरपा करी हुण मन दा बेड़ा डुबदा पई, समझ नहीं पैंदी तू किथे वे, उथे बेड़े तू बाहर लाए समुंदर विच, इथे पखंडियां दे पानी विचो बेड़ा किनारे ला दई, ते असल विच मेरा गुरु तेग बहादुर लांदे ही बेड़े किनारे रहे। कदी किसे दा बेड़ा मन दा डुबन लगा ओनू शब्द दा ला के चप्पू गुरु ने किनारे ला दिता है, जे किसे दा दूसरा बेड़ा डुबन लगा ओनू मोटा ला के किनारे ला दिता है, ते जे किसे दे धर्म दा बेड़ा डुबन लगा है ते सतगुरु ने शीश ला के उस बेड़े नू किनारे ला दिता है। सतगुरु बेड़े नू किनारे लांदे ने, एही कारण गुरु पद दी व्याख्या ही एवे कि सतगुरु पार करदे ने। खैर मैं संखेप विच अर्ज करा, मक्खन शाह ने सब नू मोहरां रखियां तुसी जानदे हो, कईआं कहा धीर मल कोल गुरु ग्रंथ साहिब ए ही गुरु है। ते उस वक्त एक गल नू समझना, सतगुरु ने शब्द वरत्या बाबा बकाला, बाबे शब्द दा अर्थ है कोई, एदा भाव है ध्यान रखना गुरु हर कृष्ण साहिब उन्हां दे बाबे दा अर्थ इत्थे दादा है, उन्हां दे दादे ने बाबा गुरदित्ता जी, क्योंकि गुरु हर कृष्ण साहिब दे पिता ने गुरु हर राय साहिब दे पिता ने बाबा गुरदित्ता जी, एदा मतलब गुरु हर कृष्ण साहिब दे दादा बाबा गुरदित्ता जी। ते अक्सर असि बाबे दे भरा नू बाबा ही कहने आ, ते बाबे गुरदित्ते दा छोटा भरा ने गुरु तेग बहादुर जी, इसे करके गुरु हर कृष्ण साहिब ने तेग बहादुर पिता जी लई बाबा शब्द वरत्या। कहन लगे मेरा दादा बकाले दी धरती ते रहिंदा है, जिन्हां गुरु बनने साध संगत। मक्खन शाह ने सारियां नू माया दित्ती, पर किसे ने क्या नहीं मक्खन शाह दसवंत दी माया तां ज्यादा बनदी है। जदो चिंता तुर होया शाम पै गई, कहिंदे ने उदास हो के पुछदा कोई होर है, पर एक मन कहिंदा मक्खन शाह सूरज ठंडा हो सकदा है, चंद्रमा गर्म हो सकदा है, हवा रुक सकदी है, समुंदर सुख सकदा है, पहाड़ खंभ ला के उड़ सकदा है, सारियां चीजां अपने सुभा नू तब्दील कर सकदियां ने, पर जो गुरु हर कृष्ण साहिब ने बचन कहे ने ओ कदी झूठे नहीं हो सकते। गुरु है बाबे बकाले दे अंदर ही, पर मेनू अजे समझ नहीं पई गुरु बैठा किते होया। गुरु दा बचन अटल है। फिर पुछा कोई होर है, कहन लगे हां एक भोरे विच बैठे ने जिन्हां नू तेग बहादुर कहिंदे ने, कदी कदी शाम नू निकलदे ने, शायद उन्हां कोल चला जा। मक्खन शाह ने अपने आदमी लै भेटा लईए, दो मोहरां कड़ियां ने, ते जदो तेजी नाल दौड़ के उस घर वल नू गया, हजूर ने भाई गड़िये नू कहा भाई गड़िया ए आवाज किदी है। कहन लगे दाता मक्खन

सामने हो गई ते साहब दे मथे नालों थोड़ी जी खह के लंघी ते खून की धारा एक बगी है। माता नानकी ने अपने दुपट्टे नाल अपने पुत्र गुरु का खून पींजे। पूंजन तो बाद उच्ची आवाज विच कहा, तीर मल ईरखा की अग भी सड़न वाले ऐसे अग ने तेनू साड़ देना है। गुरु नानक की जोत गोलियां दे नाल कदी खत्म नहीं होंदी। दबकिया नाल इन्हें दबना नहीं, तीर मल सब कुछ लुट के लै गया है। रात सब कुछ लुट लिया ते कहिंदे ने जिन्नी भेटा सी गुरु का समान भी लै गया। एक सिख भजा गया वो मक्खन शाह, जिस गुरु नू तू प्या प्रगट करना है तेरे गुरु दे घर नू तीर मल लुट के लै गया। तेरे गुरु ते गोली चल गई है। 500 शस्त्र धारी मक्खन शाह दे नाल रहा नहीं गया, तीर मल दे घर पहुंचे ते इना बैराग विच पहले ही भरिया सी। जांदियां सार सिंह मसंतियां इन्हें मुश्कां बन दित्तियां। तीर मल नू क्या पैरां विचों जुत्ती उतार दे। मक्खन शाह ने कहिंदा, जे तू किते गुरु अर्जन साहिब दी संतान ना हुंदो, गुरु हरगोबिंद दा पोतरा ना हुंदो, ते याद रख मैं तेरे सीने विच गोली कर देंदा, पर तू गुरु दी संतान है, मैं गुरु नानक दे घर दा कुकर। इहदे पैरां विचों जुत्ती उतरवा दित्ती। सिंह मसंतियां मुश्कां बनियां, इन्हां नू नाल लै तुरे ने। जिन्ना समान लुट के गए ने सारा उन्हां दे सिर ते रखा के गुरु तेग बहादुर जी दे घर पहुंचे। चरना ते देख के कहिंदा, दातिया मैनू खिमा कर दी, सिख दा फर्ज है गुरु दी सेवा करनी, मेरे हुंदिया तेरे ते गोली चला किवें कोई जाए, तू समर्थ है। साहब ने कहा, मक्खन शाह आ माया दिया गंढा ही तां पवाड़े दी जड़ दी, इन्हां दी मंजिल माया है, साडी मंजिल कुछ होर है, दे इन्हां माया इन्हां नू, क्योंकि माया नाल शायद तृप्त हो जान। पर नाल कह दिता, ओ तीर मल जिन्नी मर्जी कच्ची कर ली पर शांति कदी नहीं आउणी। साहिब ने माया दे दिती। गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप लियांदा सी, खैर ओ भी वापस होया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पिता गुरु प्रगट हो गए ने। अज बाबे गुरदित्ते दी अंश विच वाहिगुरु बाबे बुढ़े दी अंश विचों भाई गुरदित्ते नूं बुलाया। ध्यान रखना, बाबे बुढ़े तो बाद गुरगद्दी दा तिलक भाई भाना जी लांदे रहे ने। भाने तो बाद सरवण जी, सरवण तो बाद भाई झंडा जी, झंडे तो बाद भाई गुरदित्ता जी, भाई गुरदित्ते तो बाद बाबा राम कोयर जी जिन्हां नूं बाबा गुरबख्श सिंह कहिंदे। भाई गुरदित्ता जी ने अज तिलक लाया गुरगद्दी दा, ते अज नौवां गुरु नानक, गुरु नानक दी जोत गुरु तेग बहादुर जी तख्त ते विराजमान हो गए ने। संगतां ने रज के गुरु दे दीदार पाए ने। साहिब बाबे बकाले तो चले ने। ध्यान रखना, अमृतसर दी धरती ते गए ने। उस वक्त अमृतसर दी धरती ते बाबे पिरचिए दे पुत्र हरजी दा कब्जा सी। जदों सुनिया गुरु तेग बहादुर आए ने, कहिंदे ने दर्शनी ड्योड़ी दा दरवाजा बंद कर दिता है, ताला ला दिता है। ते कई बारी मैं सोचना, देखो हे माया तू क्यों जे भरम परवानी है। गुरु नानक दा घर है हरिमंदर साहिब, गुरु नानक दा हिरदा हरिमंदर साहिब, हाँ जो कि गुरु नानक दा घर है, ते उस वक्त दे माया दे विच ग्रसे हुए लोकां ने गुरु नानक नूं अपने घर विच भी आउण लग्या, ताले ला दिते, ताला ला दिता दर्शनी ड्योड़ी नूं। ते गुरु तेग बहादुर साहिब अकाल तख्त दे नाल इक थड़ा है जिन्हों असी थड़ा साहिब कहने, इशनान किया सरोवर विच, ते नाल कह दिता, सिखो हरिमंदर नूं भुल्यो ना, इनू छड्यो ना, जे मसंद बिरती वाले ताले भी ला जान पर हरिमंदर नालों टुट्यो ना, क्योंकि इन्हें तुहाडे अंदर नूं जीवन देना। सतगुरु इशनान कीता, कुछ समा गुरु रामदास दा शुक्र कीता, मसंद चले गए। मक्खन शाह ने कहा, दाता जे हुक्म करे सारिया नूं बन के लियावां। साहिब ने कहा, नहीं मक्खन शाह समा आवेगा, इन्हां सारिया ने चले जाना है, क्योंकि झूठ कदी टिकिया नहीं रहना, यह सच्चा घर है, इथे सच दी सिफत होवेगी। गुरु तेग बहादुर तुरे ने, पिंड वल्ले पहुंचे ने, ते वल्ले नू साहिब ने कहा सी, पिंड वल्ला गुरु का गल्ला अमृतसर दियां संतां नू पता लगा, गुरु अर्जन साहिब गुरु हरगोबिंद साहिब दे सपुत्र गुरु तेग बहादुर आए ने, ते माइयां भज के गईयां ने अगे के साहिब सानू बख्श दई, इन्हां लोकां ने दरवाजे बंद कर दिते। ते साहिब ने उते शब्द वरत्या सी, माइयां रब रजाइयां, कहन लगे चरनी लाइया, तीन शब्द वरते। उन्नी देर नू मसंद भी आए, मक्खन शाह ने कहा, कमलियो गुरु आया सी बख्शन, बदकिस्मतो तुसी दरवाजे बंद कर दिते, मसंद गए ते जाके

जो लड़ दीन के खेत पुरजा पुरजा कट मर कबहू ना छड़े खेत मरता मरता जग मुआ कबीर मरता मरता जग मुआ मर ही ना जानिया कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो।

एक मौका दिता है कि बच्चों अजे भी समझ आओ, मौका जे तुहाडे कोल, जे तुसी इस्लाम नू कबूल करो। उथे एक गल की इन्हों ने कह लगे, ओ वजीर खां, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। तुसी सच नू मिटाना चाहते हो, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। कह लगे, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से, उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से। कह रहे हम तुमको खुदा की जुबान से, असि रब की जुबान विच बोल के कहने के सच नू मिटाण वाले मिट जांदे ने, सच कदी मिटना नहीं। कहने साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह दोनों आ गए ने, नीयां चिन्नियां इकट्ठियां कीतियां शुरू। उस वक्त सवाल उठिया, इन्हां बच्चियां नू शहीद कौन करेगा? ते समाणे दे दो जलाद आए ने, शासल बेग ते बाशल बेग। इन्हां दा मुकदमा सी सरहिंद। कहन लगे, सूबा जे तू सानू मुआफ कर दें ते इन्हां बते बच्चियां नू कतल असी करांगे। नीयां विच नहीं चिणे गए, चेते रखना, इतिहास दी इस गलों सानू गवाही मिलदी पई है, नीयां विच चिणिया है, आरंभ कीता है। ते कहिंदे ने उस वक्त ना दूना सिंह ने एक गल बड़ी सोहनी लिखी, कहिंदा एक तोता आया, तोता बोलदा पंजाबी, ते कहिंदे ने इको दम नीयां कोल आया ते उच्ची आवाज विच कहिंदा, अज जालमां दी जड़ पत्ती गई। कहिंदा जिधर लंघदा वो उच्ची उच्ची यही पुकारी जांदा, अज जालमां दी जड़ पत्ती गई। सुन वाले सुनदे ने, देख के हैरान ने, अज पंज साल ते सत साल ते कुछ कुछ महीने उत्ते ने, दोनों साहबजादे खलोते ने, ओ सामने ठंडा बुरजे ते दादी मां उथे खलोती हुई पोतिया नू देख दी पई। नीयां फतेहगढ़ साहब ते बुरज जेड़ा ओ ज्यादा दूर नहीं, बिलकुल नेड़े ने। दादी मां देख दीए ते अज कदी तको का उस बुढ़ी मां दे किरदे नू, जिन्हें कदी पति दे शीश नू तकिया होवे, ते अज ओदे पोते जदो शहीद हुंदे होण ओ अपने नेत्रां नाल तकदी पई ए, ते ओदे किरदे ते की बीतदी होवेगी। इन्हां ने दीवार शुरू कीती, शासल बेग ते बाशल बेग दोनों जलाद ए अपने कोल कृपाना लै के, ए तलवारां लै के आ गए ते कुछ किन्ने छुरे तिखे लै के आए ने। मैं अर्ज करा, भाई वीर सिंह होरां ने दा खास करके जिक्र कीता है, किन्ने जदों दीवार खड़ी कर लगे ने, कुछ विद्वाना ने बड़ी रोचक गल कही, किन्ने उस वक्त इट्टां तोड़दे ने, ते बाबा फतेह सिंह बाबा जोरावर सिंह किन्ने सजना ए इट तोड़ना। पुछया क्यों? कहन लगे, अज गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दे शरीर उते नी नहीं, असल विच अज ए खालसा राज दी पहली नी रखी गई आ, पहला निशान एथे चुलना ही। ते वाकई चुलिया, जदों अल्लाह यार खां जोगी लिखदा ए नीयां विच चुनदे पए ने, ते बच्चियां ने वजीर खां नू कहा सी, कहन लगे, हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सरों ते उठा चले। अज धरती ते नहीं, साडे सिर ते सिक्खी दी नी रखी जानी है। धरती ते रखिया हो सकदा सी धरती डोले ते नी गर्क हो जाए, पर गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दे सिर ते रखी हुई नी कदी पटी नहीं हो जानी, ए अडोल रहनी है। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, एक गल की सिंघों की सल्तनत का पौधा लगा चले। पौधा दर ते रुख, अज सिख राज दा पहला रुख लगा, सिंघों की सल्तनत का पौधा लगा चले। तो ना क्या तुसी ता चले, फिर राज कौन करेगा? कहन लगे, गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, वजीर खां दुनिया में जालमों का निशान तक मिटाएगी। निशान खत्म हो जाएंगे, पर याद रखी, जिथे गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नू तू खड़े करना, इथे केसरी झूलना ही, इथे सिख राज दा सिक्का चलना ही। ते वाकई चलिया, मैं अगे चल के बेनती करना वा, दोनों साहबजादे खलोते ने, ते विद्वान कहिंदे ने दीवार ढह पई है, कंध डिग पई है। उस वक्त उन्हां सजना दे कहण मुताबक भाई वीर सिंह जी कवि सैनापत कहिंदे ने, जदों दीवार डिगी है उस वक्त दोनों जलादा ने इन्हां बच्चियां दीआं बाहां ते लत्तां नूं घुट के पकड़ लिया है। कहिंदे ने, इन्हां पापियां ने बच्चियां नूं को को के इन्हां दी जिहड़े आ गर्द ने, इन्हां ने शाह रग जिहड़ी है उह खंजर दे नाल कर दित्ती सी। दोनों बच्चे जमीन ते पए ने, इन्हां नूं शहीद कर दिता गया। जदों इन्हां दी शहादत होई, उधर हाहाकार मच गई है। कहिंदे ने, साध संगत मेरे गुरु कलगी वाले सच्चे पिता उस वक्त राय कल्ले दे कोल पहुंच चुके ने। ध्यान देना थोड़ा जिहा, जिहड़ा मैं अर्ज कर रहा, एकाग्रता बख्शनी, राय कल्ले दे कोल पहुंच चुके ने।

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईयां ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता दी आज्ञा नू सत करके अपने

जप आद सच जुगाद सच है ही सच नानक खुशी थी सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई रखे जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले।

ہاں کریں وکھیان، داشن داش کہے جن نانک، جے ہاں توں کراہیں تے ہاں خوں کریں وکھیان۔ پرم سنمان یوگ ستگرو صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دے پاون پوتر حضوری اندر شوبائے مان ہوئے بیٹھے گرمخ پیارے ست سنگی جنوں، آپ جی ہفتہ واری دیوان وچ ستگرو دے پوتر چرن سپرش کرن واسطے صاحباں دی پیاری گود وچ اکتر ہوئے بیٹھے ہو، جویں آپ جی نو اے سب نو جانکاری ہے کہ 27 جون نو شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ جی دی برسی سی، جس نو آپاں اج ستگرو دے گھر اندر منا رہے ہاں۔ آپ نے بڑے پیار دے نال کیرتن وی سرون کیتا ہے اور گرمخ پیاریاں تو اس درش نو تواریخ دے اس پنے نو سرون کیتا جدو مہارانی جند کور اپنے سپتر دے شیش تے کیس نا دیکھ کے اس نے سب کچھ سہ لیا اپنے اتے، پر اینو نہ سہ سکی کہ کلگی والے دی مور میرے پتر دے سر تو گم ہو جائے۔ آؤ اس شیرے پنجاب دے جیون دے سماچار تہاڈے نال آپ سنگت نال سانجے کرنے نے۔ میں صرف اونا دی جیونی وچو پکھ اونا کو آپ نال سانجا کرنا، سمے اندر رہ کے اس دے جیون نو تک کے ساڈی ساڈے گرو نال بن آوے، اس دے جیون نو پڑھ کے او دی نرمانتا نو تک کے اسی اپنے اتیت وال اپنے اونا بزرگاں دے اتہاس تو جانو ہو سکیے جنہ دیاں باواں وچ وی طاقت بڑی ہے تے نمرتا دے وی پنج سن۔ آؤ صاحب شری گرو گرنتھ صاحب میر کرے آپ کرپا کر کے وچ ورتے، میرا ستگرو کرپا کر کے اکاگرتا بخشیا جے جننے وی آپاں بیٹھے ہیں، کیونکہ اکاگرتا تو بنا آنند نہیں۔ گرو بخشی فتح پروان کرو جی۔ واہگرو جی کا خلصہ، واہگرو جی کی فتح۔ ستگرو گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر الہی گربانی دا جدو آپاں پاٹھ کرنے تے گرمت دے سدھان دی آپاں جدو وچار کرنے ہاں تے ستگرو نے بانی اندر دو پکھ منک دے بیان کیتے۔ منک دے کی اس بنائی ہوئی سرشتی دے ہر وستو دے دو پکھ دتے نے، جتھے میرے ستگرو نے بانی وچ امرت دا ویروا دتا ہے، امرت دی سمرتھا کی ہے، امرت اندروں پی کے منک کیڑیاں اس روحانیت دیاں پنگاں نو چھوٹ دے، اوتھے صاحب نے اس دے وپریت جڑے وشے وکار نے انہاں وچ منک جدو ڈب جاندا ہے تے ادو ایدا جیون تباہ کیویں ہو جاندا ہے۔ امرت دی چڑھدی کلا تے وکاراں وچ گرک ہوندے جیون دونوں نو بیان کیتا ہے۔ ستگرو نے ایک پاسے اس منک دی دہی نو اینا کو سلایا جڑا نام بھی جڑیا اونوں کہہ دیتا تے نر ہر انتر نہیں، نانک ساچی مان
उस मनुख विच ते प्रभु विच कोई अंतर नहीं जेड़े नाम विच भिजे ने। ते दूजे पासे इस देही दी गल करदे आ कह दिता, कहन लगे एक भगत भगवान जे प्राणी कह नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। सोचदे होगे भी आपां बरसी तां मना रहे हैं पर गल बाणी दी जुदे पासे नहीं, मैं गल राज दी करनी। साहब ने जिथे अमृत दी गल कीती उथे वकार जेड़े जीवन नू तबाह करदे ने उन्हां दा जिक्र कीता। जिथे साहब ने भिजी कोई अंदर दी ओ आत्मा जेड़ी एकमिक हो चुकी है ओदी वडियाई कीती, उथे मेरे गुरदेव ने रब तो टुटिया होया दे जीवन नू भी बयान कीता। जिथे सतगुरु ने बाणी विच ए कह दिता, जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले। उथे नाल ही कह दिता, जे को गुर ते वेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। दोनों पक दे दिते। जिथे साहब ने कहा, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। उथे नाल ए भी कह दिता, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। सनमुख दी गल कीती नाल बेमुख दे जीवन नूं भी दस दिता, सच्ची बाणी दी गल कीती नाल कच्ची बाणी दा वेरवा दे दिता, अमृत दी गल कीती नाल जहर दी गल कर दिती, रब नाल भिजे हुए संत दी गल कीती ते नाम तो टुटे हुए साकत दे जीवन नूं बयान कीता। ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी गल पढ़ी ओदे विचों राज दा संकल्प तकिया, ते साहिब ने उस राज नूं प्रवान ना कीता जिस राज विच रब गुरु परमेश्वर भुल जाए ते मनुख जुल्म कर लग पै। ते जदों दूजा पख लिया ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने राज नूं प्रवान भी कीता। साहिब दी बाणी विचों कुछ प्रमाण ने, सतगुरु केड़े राज नूं प्रवान नहीं करदे। हजूर दा बचने, ऐसो राज ना कीता काज जित नै तृपताए। केड़े राज नूं गुरु प्रवान नहीं करदा, राजे शी मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नांदा पायन काओ, रात पेत कुत्ते ओ चत जाओ। इस राज नूं प्रवान नहीं कीता। केड़े राज नूं गुरदेव ने प्रवान नहीं कीता, बाणी दे अंदर जिस कै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होत सवान। साहिब ने एहो जै राज नूं प्रवान नहीं कीता। पर एक गल चेते रखियो, जे आपां कहीए वी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी राज दी गल नहीं करदी, गुरु ग्रंथ साहिब दा पहला शब्द ही श्री राग दा एवे कहिंदे ने, सुल्तान होवां मैं लश्कर। राज नूं प्रवान कीता। कहिंदे ने, हे मालक जे तू मैनूं बादशाह दे देने, सुल्तान होवां मैं लश्कर, तख्त राखां पाऊं हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ पर इना राज लै के एक मेरे ते कृपा कर दे, सुल्तान बना दे, फौज दे दे, राज भाग दे दे, पर मत देख भूला विसर तेरा चेतना आवे ना, किते तेनू भूल ना जावा राज भाग देख के। साहब ने केड़े राज नू प्रवान कीता। साहब कहिंदे ने, रसना जपिया एक नाम, इया सुख आनंद घना, आगै जी कै संग काम, कतिया तेरा अंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग। साहब ने केड़े राज नू प्रवान कीता। सतगुरु की बाणी पढ़ने आ, भगत रविदास ने एक उच्ची आवाज विच होका दिता, केवल गुरु साहबान नहीं भगतां दी बाणी कदी वाचिए, भावे गल उन्हां ने रूहानियत दी उड़ारी दी कीती पर उन्हां ने बाहर दा निजाम की हो जाए चाहिदा है। कहन लगे, असलियत जे मैं ता उस वतन दा वासी हां। वतन दी गल बाबे रविदास ने भी कीती, कहन लगे मैं ता उस वतन दा वासी हां जिथे परजा उत्ते जुल्म नहीं हुंदा, जिथे परजा ते तशद्दुद नहीं कीता जांदा, जिथे हर एक नूं गल करन दा पूरा अधिकार है, जिथे कोई मर्जी मनुख उस राज विच विचरे ओनू कोई नजर बंद करके जेल विच जंजीरां भी जकड़ के सट्टण वाला नहीं, उथे कदी किसे दे पुत्तां नूं बेदोषियां नूं कोह के खत्म नहीं कीता जांदा। केड़े राज दी गल कीती गुरु ग्रंथ साहिब ने? कहन लगे, एक ओहो जिहा राज चाहीदा जिहड़ा बेगमपुरा शहर को ना हो। साहिब ने उथे जिक्र कीता, दुख अंदोह नहीं तै ठाऊं, ना तसवीज खिराद ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल,
अब मैं खूब वतन गए पाई ऊआ खैर सदा मेरे भाई। कहन लगे प्यारे आबादान सदा मशहूर ऊआ गनी बसै मामूर ते ओ राज की हो जे ज्यों ज्यों सैल करे त्यों पावे महरम महल ना कोट कावे। उथे कोई रोकण वाला नहीं राज एको जे। बाबे फरीद वर्गा सूफी संत जेड़ा इन्ना बाणी विच भेजा नाम विच भेजा इथों तक कहिंदा है कि जे सजना रब नूं पाणे ते किसे दे हिरदे नूं दुखाई ना। बाबा जी दे बचन असीं पढ़ने आ सबना मन मानक ठान मूल चांगवा जौ तो प्रिया दी सिख हे आओ ना ठाए। कही दा किसे दे हिरदे नूं दुखा ना। ते जिदन उस फरीद ने स्वतंत्रता दी आजादी दी गल कीती राज दो तरह नाल कायम कीता जांदा है। एक ता ओ लोक जेड़े जुल्म ते तशद्दुद करके प्रजा नूं गुलाम करदे ने ते उहनां ते दिन रात जुल्म ढांदे ने अपनी राज दी हबश पूरी करदे ने। ते एक ओ मरजीवड़े जेड़े अपनी अनख नूं कायम कर ली ते रब ने जिंदगी दित्ती है स्वतंत्र गुजार ली संघर्ष करदे ने राज ओ भी कायम करदे ने पर जुल्म ढाण ली नहीं जुल्म नूं रोकण वास्ते। मैं जिस राजे वल तुर रहा ओदे जीवन तो पहला बाणी विचों अर्ज करनी है। फरीद वर्गा महापुरुष कहिंदा है किसे दे हिरदे नूं ढाण ना। ते जिदन स्वतंत्रता की गल की उदन उस फकीर ने एक गल कह दी रबा मनुखा देही अमोलक है बड़ी मुश्किल नाल मिलदी है पर मैं एक तेनू कह दिया जे फरीद नू जिउंदे जी किसे दे दरवाजे दा गुलाम बना नहीं किसे दे दरवाजे अगे झोली अटन लई मजबूर कर नहीं ते मैं चाहना ऐ खुदा किसे दी गुलामी कबूलन तो पहला मेरी जिंद नू मेरे शरीर तो स्वतंत्र कर दई क्योंकि मैं किसे दे दरबार विच गुलामी दे दिन नहीं कर सकता। बाबे फरीद वर्गे महापुरुष ने बाणी विच कह दिता फरीदा बार पराए बैठना साई मुझे ना दे जे तू एवें रखसी जीओ शरीरों ले मेरे शरीर विचो जिंद नू कढ़ ली। ते जिस महाराजे दा जिक्र आपा कर लगे हां मैं कोशिश करांगा ओदे जीवन विचो पंछी झात आपा निकलीए। गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबार विच आनंदपुर साहिब दी धरती ते एक मनुख आए। मैं साहिब दे दशमेश दे जीवन नाल इहदे जीवन नू आरंभ करना इस खानदान दे जीवन नू। सतगुरु दे दरबार विच एक मनुख आए ते साहिब ने जदों अमृत दी दात दित्ती ते इस नौजवान ने खलो के कहा सी दातिया अमृत दी दात मेनू भी दे। सिख विद्वान लिखदे ने कि उस मनुख दा नाम सी बुढ़ा मल ते इन्हें हाथ जोड़ के कलगी वाले दे चरणा विच खलो अमृत दी जाचना कीती ते जदों साहिब ने अमृत दी दात दित्ती ते इहदा नाम रख्या गया सी बुद्ध सिंह। गुरुदेव पिता तो अमृत दी दात लई नाम बुद्ध सिंह रख्या। बाबा प्रेम सिंह होती लिखदे ने इसने इन्ना कु जालमा नाल टक्कर लई इहदे शरीर उत्ते 40 निशान सन गोलियां दे नेज़ियां दे करबाना दे तीरां दे। बुद्ध सिंह दे तन ते 40 निशान ने। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जिक्र करदा इहदे तन ते 43 निशान ने। गल मुकदी की ओहदे तन ते 40 निशान ने दुश्मना नाल टक्कर लैंदिया सारा शरीर विन्निया पिया। सिख विद्वान कहिंदे ने बुद्ध सिंह दी एक घोड़ी सी जिहदा नाम देसा सी इस करके इहदा नाम नाल ही इन्ना जुड़ गया सी असवारी करन वाले दा ते असवारी दा नाम इन्ना कु एकमिक हो गया इहनू देसा बुद्ध सिंह कहन लग पए सन। देसा बुद्ध सिंह अपनी घोड़ी दे पिछ ते सिख विद्वाना मुताबक 50 वारी इहने जेलम ते चन्हा नू आर पार कीता सी। बुद्ध सिंह इहने जदों गुरदेव तो अमृत दी दात लई इहदे कर फिर दो पुत्र पैदा होए। एक दा नाम सी नोद सिंह ते दूजे दा नाम सी चंदा सिंह। चंदा सिंह सरदार जिहड़ा इह संधा वालियां घराणे दा मोढ़ी होए। नोद सिंह जिहड़ा इहने गुजरां वाले दे नेड़े अपने बाप दी मौत तो बाद गुजरां वाले दे नेड़े एक शुकर चक थे विछाया। इसने पहला 30 नौजवान सिख अपने नाल जथे विच रलाए ने। इन्हें सुकर चक थे विछाया जे सच पुछो ओ सुकर चकिया मिसल दा ओदन मूल सी ते सुकर चकिया मिसल दे नाल नाल इउं समझ लो कि सिख राज दी पहली नींह ओदन रखी गई सी। 30 बंदे बाबा नोद सिंह ने इस नोद सिंह सरदार ने भर्ती कीते।
नोद सिंह तो बाद इहदे घर दे अंदर चार पुत्रां ने जन्म लिया, चरत सिंह, चेत सिंह, माकी सिंह आदक। नोद सिंह दी मौत हुई ते इहदे पुत्र चरत सिंह ने सुकर चकिया मिसल दी कमांड नूं सांभिया। मैं रणजीत सिंह जी दे पिछोकड़ दी अर्ज कर रहा, चरत सिंह जिदन मिसल दा आगू बणिया उदन इहने इक नेह बना दिता सी, जिन्हें साडी मिसल भी सामने होना है ओनू कलगी वाले दे दर दा अमृत पान करना पेगा। ते जदों कोई नवा सिपाही भर्ती करदा सी उदों चरत सिंह आप पंजा प्यारियां भी शामिल होके ओनू अमृत दी दात दिंदा हुंदा सी। मिसल विच सिपाही भर्ती तां करना, पहलां इहने अमृत दी दात देनी। जदों चरत सिंह दा जीवन आया उदों मिसलां राजभाग कायम पईआं करदीआं ने। इधर अबदाली ने हमला कीता कुपर खेड़े दे मैदान विच, इहने हजारा सिख कोह के खत्म किते ने, बुझे बुढ़े बच्चे अनेक जेड़े गभरू ने उन्हां नूं इहने शहीद कर दिता। ते इस कुपर खेड़े दे मैदान विच सरदार चरत सिंह ने वंगार के एक गल कही सी, अबदाली लोकां दे पुत्र मरवाना पे, जे तेरिया बाहां विच दम है तू मेरे सामने आके मेरे नाल टक्कर लै लै। इत्थे चरत सिंह ने वंगारिया सी। चरत सिंह तो बाद इहदे घर इहदा पुत्र महा सिंह ते सोज सिंह दो पुत्र होए। चरत सिंह तो बाद महा सिंह ने सुकर चकिया मिसल दी अगवाई कीती है। महा सिंह जिहड़ा इहदा दिन दिन प्रताप वधदा गया, इथों तक के राणी सदा कौर जिहड़ी है उहने भी इहदे नाल सांझ पाई। मैं अर्ज करां सरदार महा सिंह दा जिहड़ा रिश्ता है, जींद दा राजा होया गजपत सिंह, उहदी बच्ची राज कौर मलवैन दे नाल महा सिंह दी शादी होई। ते चेते रखना महा सिंह ओह भागां वाली घड़ी आई, गुजरां वाले दी धरती है। कुछ बडरुखां दा जिक्र करदे ने, गुजरां वाले दी धरती है। 2 नवंबर सन 1780 आया, उस दिन एक बालक दा जन्म होया राज कौर दी कुख विचों महा सिंह दे घर अंदर, ते उस बालक दा नाम रखिया गया सी रणजीत सिंह। इहदा पिछोकड़ रणजीत सिंह दा जन्म होया। बाप ने खुशियां मनाईयां ने, अजे थोड़ी जी उम्र दा होया ते रणजीत सिंह नू चेचक ने दब लिया। कहिंदे इहदे बचन दी कोई उम्मीद नहीं सी, इहदी खब्बी अख सदा वास्ते बंद हो गई। ते वेखण वाले सोचदे सन पता नहीं इस बच्चे ने बचना के नहीं, पर सिख विद्वान लिखदा है नहीं दुनिया दे लोको, जदों ओहदी इक अख सदा ली चली गई ओदा शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। पर खूनी हस के कहिंदी सी, जिस बच्चे नूं तुसी कमजोर कहिंदे हो इहने कदी गुरु नानक दे नाम दे सिक्के चलाने ने, इहने धरती पंजाब दी महाराजा बनने, इहनूं शेरे पताब पंजाब दा खिताब दिता जाणा, इहने तां कई सदियां दे जालम आलम हमलावरां दे दंद खट्टे करके पिछा नूं मोड़ देणा। रणजीत सिंह कुछ समय तो बाद वल होया, जिदन महा सिंह दी उम्र 27 साल दी होई ते इधर रणजीत सिंह जिहड़ा इहदी उम्र 9 कु साल दे करीब होई। 9 साल दी उम्र विच रणजीत सिंह अपने बापू नाल मुहिम उत्ते जान लग पिया सी। सिख विद्वान लिखदे ने इधर राणी सदा कौर होई है कन्हैया मिसल दी, ओहदे मालक नूं भावां के महा सिंह ने मारिया, जदों ने देखिया के महा सिंह दी ताकत वधदी पई है उन्हें उसे वक्त सारे वैर विरोध भुला के अपनी धी महताब कौर का रिश्ता रणजीत सिंह दे नाल कर दिता। महा सिंह अजे जिउंदा है। किन्ने जदों इहदा रिश्ता होया ते सरदार महा सिंह गया गुजरात, भावां के ए आपसी लड़ाई मिसलां दी सी, रणजीत सिंह भी उत्थे पहुंचिया ते रणजीत सिंह अपने बापू नाल। महा सिंह उस मौसम विच खाना चंगा ना मिलन करके बीमार हो गया, इन्ना कु बीमार होया इहदा शरीर बिल्कुल रह गया, इंज भासिया के जिवें मौत बिल्कुल नेड़े पई आउंदी। इह गुजरात तो वापस परतिया, अपने पुत्र रणजीत सिंह नूं उत्थे सिख विद्वान कहिंदे दस्तार दे के आए। मिसल नूं कहा अज तो बाद मेरा पुत्र रणजीत सिंह तुहाडी अगवाई करेगा। छोटी जी उमर ए महा सिंह अपने घर वापस गुजरां वाले पहुंच गया ते रणजीत सिंह ने पहली जंग बापू तो बाद ओ जीती है। ते जदो जंग जीती सनेहा भेजिया के अज तेरा पुत्र मुहिम नू फतेह करके आ रहा है, ते महा सिंह दी ओ आखरी जित सी
इस खबर तो बाद महा सिंह जिहड़ा वह चलाना कर गया। 27 साल की उम्र में महा सिंह चलाना कर गया। रणजीत सिंह ने अपने बापू का संस्कार आके हथी किया। उस वक्त एदी मां राज कौर ने ते एदी सस सदा कौर ने एदे उते इना कु हथ रखिया, इस बच्चे नू इना जोड़ के रखिया। कुछ समय ए उदास होए सिख विद्वान मानदे ने, पर जदों कुदरत ने साथ दिता फिर रणजीत सिंह जेड़े पासे भी इन्हें पैर वधाया। एक गल चेते रखियो, जित ने एदे पैरां नू चुमिया, कोई थां ऐसी नहीं जित्थे रणजीत सिंह ने हार दे मुंह नू तकिया होवे। रणजीत सिंह ने लाहौर ते कब्जा कीता। यह सन 1801 की घटना, जदों सिख राज कायम हुंदा इन्हें लाहौर ते कब्जा कीता ते लाहौर की प्रजा ने खुद कहा रणजीत सिंह नू अजे महाराजा नहीं बनिया कि लाहौर की प्रजा दे तीन हाकम ने, भावें यह सिख सरदार सन, आपस में लड़ते ने, तू इत्थे आ के कब्जा कर, तेरे राज विच सानू सुख मिल। रणजीत सिंह लाहौर पहुंचे, इन्हे जदो इत्थे कब्जा कर लिया ते सन 1801 दे अंदर जितने भी सरदार ने, जितने भी अहलकार ने, इन्हों ने सलाह की कि रणजीत सिंह नू महाराजे का खिताब दिता जाए। शुरू तो नहीं, 1801 दे अंदर इकट्ठ होया, रणजीत सिंह नू खिताब देना चाहते ने, ते अगो इन्हें उत्तर दे दिता सी, नहीं मैनू खिताब ना दियो, मैं ता प्रजा दा सेवक हां। जदो उन्हां ने फिर वार वार कहा, नहीं रणजीत सिंह तेनू महाराजे दा खिताब देना है। आखिर ते ओ मन गया ते वैसाखी वाले दिन इकट्ठ कीता। प्यारियो, दूरों दूरों दूजियां रियासतां दे मनुख भी आए, सिख सरदार इकट्ठे होए। लाहौर दा कोई गुरुद्वारा नहीं जिदन महाराजे दा खिताब मिलना है। हर गुरुद्वारे दे अंदर अखंड पाठ प्रारंभ किया गया सी। मंदरां विच पुजारियां ने प्रार्थनावां कीतियां। इत्थों तक के पहला समा सी लाहौर दियां मस्जिदां विच भी मुलाणियां ने दुआ कीती, या रब रणजीत सिंह नू लम्मी आरबला दई, एदे राज दे अंदर असी आजादी दा निग माण सकी। जिदन अखंड पाठ साहिब दे भोग वैसाखी वाले दिन पाए गए, दरबार सजे है, गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश कीता है। देखो अज सिख राजे दे जीवन नू गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करके ज्ञानी गुरमुख सिंह ग्रंथी सन, उन्हां ने गल विच पल्ला पा के अरदास कीती ते रणजीत सिंह ने कहा सी, ज्ञानी जी तुसी बड़े गुरु घर दे अनन सेवक हो, एक अरदास करियो कि गुरु नानक साहिब एक कृपा करी, रणजीत सिंह नू ओ जित दई जिस जित विच गुरु मैं तेरा अदब सत्कार कर सका, मेनू ओ कामयाबी दई जिदे नल तेरे घर दी शोभा होवे, मेनू ओथे कामयाब ना करी जिथे मैं देखा के तेरी गुरमत नू खोरा लगदा होवे। कहिंदे उस वक्त ज्ञानी गुरमुख सिंह ने अरदास कीती। अज चार चपेरे रणजीत सिंह दे फुलां दी बरखा कीती गई ते बाबा साहिब सिंह जी बेटी उन्हां साहिब वाले उन्हां अपने हथां नाल शेरे पंजाब नू तिलक दिता। पहला रणजीत सिंह सी सुकर चकिया मिशल दा जथेदार, अज तो बाद सिख कौम विच महाराजा रणजीत सिंह बन गया। इनू जदो तिलक दिता गया, महाराजे दा खिताब दिता है, ते उस वक्त सिख विद्वान कहिंदे ने बेअंत कवि उत्थे आए सन। हुण गल चली भी सिक्का आपां किदे नां दा चलावांगे। विद्वान लिखदे ने, किसे ने कह दिता तुसी बुद्ध सिंह दे नाम दा चलाओ, किसे ने कहा तुसी नोद सिंह दे नाम दा चलाओ, किसे ने कहा चरक सिंह दे नाम दा चलाओ, किसे ने कहा रणजीत सिंह दे नाम दी कविता उचार दिती। अपने अपने विद्वाना ने विचार दिते कि सिक्के उते एदा नाम होवे। जदों सारे ने अपने अपने विचार पेश कीते ते रणजीत सिंह ने गल विच पल्ला पा के कहा सी, खालसा जी ए राज मेरा नहीं, ए राज गुरु नानक दा है, ते जिदा राज सिक्का भी ओदे नाम दा चलना चाहिदा है। रुपये दा नाम रखो नानक शाही रुपया, ते सिक्के दा नाम रखो, पैसे दा नाम रखो नानक शाही पैसा। उथे जदो सिक्का ढालिया गया, पुरातन विद्वान लिखदे ने सिक्के दे एक पासे गुरु नानक साहिब जी विराजमान ने ते भाई मरदाना कीर्तन पिया करदा है। दूजे पासे सिक्के ते लिखिया गया, देगो तेगो फतेह, नुसरत बेद रंग,
ਜਾਪਤ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਕਰੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਗਏ ਉਹ ਸਨ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ, ਜਾਪਤ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਹਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰਤ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਚੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, 1800 ਤੇ 1822 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਬੰਤੂਰਾ ਆ ਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਨਰਲ ਬੰਤੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, 5 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਨੇ 5 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਤ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਦਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਦਾੜੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਚੌਥੀ, ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇਰੀਆਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਬਤ ਸੁਤਰੀ, ਦਾੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੁੱਚੀ ਦਾੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਬੜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਆਂਗੇ ਪਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਉਦਣ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 1803 ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਤੇ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਬਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਤੇਰੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਖੈਣ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਤੋਪਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਨੇ ਫੋਕੇ ਫੈਰ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਨਾ ਦਾਗਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਭੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ
पूरे जोबन ते खून लगी है। ते उस वक्त सिख कौम दा मरजीवड़ा जरनैल आया अकाली फूला सिंह। देखो ओदा अदब, ओ पक्षपाती नहीं सी, ओ इको गल चाहुंदा सी कि खालसे राज दे झंडे चुलन। विच आके खलो गया, कहन लगा एक दूजे ते गोला चलाण तो पहला जे तुसी मैनू गोले नाल विन दे उते चंगी गल है, मैं अपने हुंदिया अमृतसर दी धरती ते सिख सिख ते गोली चलाए ए मेरे तो सहा नहीं जाना, मेनू गोले नाल अड़ा दियो। दोनों धिरां ने कह दिता बाबा जी जो कोई तुसी करोगे सानू परवाह नहीं। उस वक्त फिर उन्हें एक गल कही रणजीत सिंह अमृतसर दी धरती ते कब्जा तेरा, रामगढ़िया ते भंगी मिसल नू कह दिता कि तुहानू जगीर दिती जाएगी। रणजीत सिंह ने कहा हां मैं जगीर भी दियांगा। उस वक्त रणजीत सिंह अमृतसर विच प्रवेश करदा है, हरिमंदर साहब इशनान कीता है, ने सरोवर अंदर नमस्कार कीती ते अखां भर आईयां, कहन लगा गुरु रामदास तू उदन ए बचन कह सन जिदन तैनू गद्दी मिली सी कि जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। दातिया मैं अनपढ़ जा बंदा एक छोटी जी मिसल विच उठिया, अज जो कुछ झोली विच पाई तेरी कृपा दे नाल मिले, बख्शिश करी ए सिदक अखीरले समय तक ने बजाए। शेरे पंजाब अमृतसर दी धरती विच फिर इन्हें एक बाग लवाया, उस बाग दा नाम रखिया राम बाग, गुरु रामदास जी दे नां ते। शेरे पंजाब दियां धार्मिक झाकियां मैं कुछ आप नाल पेश करनियां ने। जदों इन्हें लाहौर कीता राज कायम, इहदे बाहूबल नूं कदी तको, अब्दाली दा पोतरा शाहजमान ओ किले विच बैठा है, ते बैठा अपने आदमियां विच कहिंदा सिख मेरे नाल लड़नगे, कहिंदा मेरे ते घोड़े दियां टापां सुन के सिख पंजाब दी धरती तो छड के पंजाब नूं दूर चले जांदे ने। किसे ने रणजीत सिंह नूं कहा रणजीत सिंह महाराजा बन तो पहला दी घटना है, अब्दाली दा पोतरा कहिंदा सी सिख मेरे घोड़े दियां टापां सुन के डरदे मारे दौड़ जांदे ने, 30 घोड़ असवार नाल लै अपनी सत सदा कौर नूं इन्हे नाल लिया ते लाहौर दे किले सामने उच्ची आवाज विच गोली चला के गल कही सी अब्दाली दे पोतरे मुदतां हो गईयां ने साडी ते तुहाडी टक्कर चलदी पई है, कुप्पर खेड़े दा मैदान सी उदन तेरा दादा सी अब्दाली ते मेरा दादा चरत सिंह सामने सी, उदन अब्दाली नूं मेरे दादे चरत सिंह ने वगारिया, तेरे दादे नूं मेरे दादे ने वगारिया, आप दाली दे पोतरे अज चरत सिंह दा पोतरा वगारदा है, जे बाहां विच दम है ते किले दा दरवाजा खोल के मेरे हाथ देख लै। जदों किसे ने इन्नी गल कही अब्दाली दा पोतरा दब गया, परत के उन्हें पंजाब दी धरती वल मुंह नहीं कीता। शेरे पंजाब उन्हें सिख राज कायम जदों कीता सिक्का गुरु नानक दे नाम दा, मोर गुरु नानक दे नाम दी, ते जे अज लाहौर ओ अपने लक दुआले पटका बंदा पे है, ते राजा ध्यान सिंह कहिंदा है कि महाराज तुसी पटका क्यों बंदे हो, असी नौकर हां, पटका असी अपने लक दुआले बनिए, ते जे विचो सिक्का कढ के कहिंदा ध्यान सिंह इस सिक्के ते नाम किदा है, कह लगा गुरु नानक दा, कहिंदा फिर जिदे नाम दा सिक्का चलदा होवे राज उसे दा हुंदा है, मेरा राज नहीं, राज ते गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दा है, सजना बस मैं ता एदे दर दा चाकर ते चाकर दा काम है, ओ अपने लक दुआले कमर कस्सा करके हमेशा तैयार रहे। ओदी भावना नूं कुछ तको कुछ बिरदां दे बयान गुरमुखां ने नोट कीते ने, ओ कहिंदे ने जदों नूं तकने आ सिख राज नूं मैं सिर्फ धार्मिक जीवन वाला पक्ष लै रहा वा, ओ जदों राज गद्दी ते विराजमान ने इन्हें एक होका दिता सी कि मेरे राज अंदर कोई ऐसा होवे सिख राज अंदर जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन कीते होन, कोई ऐसा होवे, ते किन्ने 126 साल दा एक बजुर्ग मिलिया सी। रणजीत सिंह अपने दरबार विच बैठा है, किसे ने आके कहा रणजीत सिंह अज ओ बजुर्ग पिया आउंदा तेरे दरबार विच जिन्हें कलगी वाले दे दीदार कीते ने, ते नंगे चरण उठ पिया अगो लैन गया, कहन लगा जदों बजुर्ग नूं तकिया
ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਧ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਖਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਇੰਨਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਰਕਰਮਾ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਏ, ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ? ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਥੀ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓ ਉਸ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਵਾੜ ਤਾਂ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਰਾਜ ਕੈਮੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਮ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਧਨ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਤ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨਿਆ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਰ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਫਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
एक सेवा पंथी महापुरुष होए ने थोड़ा जा मैं खिंड चला विचों गल फिर उथे लैके आवांगा। दुख भंजन जी उन्हां दा नाम होए, रणजीत सिंह उन्हां दे दर्शन करन उन्हां दे डेरे गया, बड़े प्यार नाल उन्हां नूं मिलिया ते बाबा दुख भंजन ने पुछ लिया कौन, कहन लगे शेरे पंजाब आए। बाबा दुख भंजन जी कोल आए, पुछया राज भाग, हाथी घोड़ियां दी गिनती दस दिती, फौजां दी गिनती दस दिती, अपने इलाके दे गज गज थां दा उहने जिक्र कीता। ते बाबा जी ने अचनचेत पुछ लिया रणजीत सिंह जपजी साहब चेते ही नीवी पा ली, कहन लगे जपजी साहब कंठी, कहन लगा नहीं, किन्ने तेनू घोड़े चेते।

गुरु अर्जुन विगनन के नाशक, विगनन के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरु तरा पर पुन पुन शीशा वाहिगुरु।

माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

0: के उल्टाई पुत्र जब
1: राम राम उल्टाती मिट्टी मुसलमान की सा बेईमान की कहता
0: त्याग दियो लाख साठ
1: मूर्खताई है समझ करके गुरु नानक की बाणी उल्टाई है छड़का मारा राम राम।

0: श्री गुरु गोविंद सिंह अकाल जोत
1: जाग रहे हैं।
0: श्री गुरु ग्रंथ प्रकाश।

साहब जी पढ़े कि अगे संतों को प्रचार किया उदू अगे इसे प्रकार तरीके चलद चलद बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी होए।

फिर कही तारू सिंह एक पूला अही। उस वेले भाई तारू सिंह दे बारे विच उस हरभगत नरंजनिए ने एक गदार है, गदार ने उदो चुगली लाई, कहन लगे सजना तू जिन्ना मर्जी कहर कर रहा, तेरे कहर करिया कुछ भी नहीं बनना। वह पुछण लगे क्यों, कहन लगे इस इलाके विच पूले पिंड दा एक भाई तारू सिंह है, वह इन्हां नूं प्रशादा पानी पहुंचाउंदा है, खेती करदा है, खेती करे बोहाला भर है। कहन लगे खेती भी करता, तुहाडा टैक्स भी दिंदा है, इस गल च कोई दो रामा नहीं। पर लेकिन एक गल चेता रखियो, जिन्ना भी हो सके वह अपने घर लई घट रखदा है, अपने घर लई जितना भी संकोच हो सके उतने संकोच नाल जीवन गुजारदा है, पर जिहड़ा कुछ बाकी बचदा है ना वह सिखां दे कोल पहुंचा दिंदा है। इसलिए भुखे तां नहीं मर रहे। हुण जकरिया खान ने मन विच विचार बना ली भी किन्ना चंगा होवे जे मैं सब तो पहला एहो जे मिलवर्तनिया का अंत करा। हुण उहदा कहर टुटिया, हुण उहदा मन इस पासे तुरिया। एक गल चेता रख, जे जकरिया खां ने अपने जीवन काल अंदर करीब 10,000 तो उत्ते सिखां दा कतल करवाया, इतना बड़ा पापी सी है, 10,000 सिखां दा कतल करवाया। यह अज तां सानूं थोड़े जे लगदे होणगे, पर उदों कौम दी गिणती बड़ी थोड़ी सी, उहनां समयां च किन्ना कु हाल होंदा होएगा। इह जी जिंदगी दे इह आखरी कतल ने। इहने फिर कोशिश कीती भी किसे तरह मैं उस भाई तारू सिंह नूं पकड़ के लैके आवां। बंदे भेजे ने, इह हरभगत नरंजनिया भी पापी नाल गया है, ते इहनां ने जाके भाई तारू सिंह जी होरां नूं गिरफ्तार कर लिया। अफरीन ऐसी मावां ते, धन ने माता, अपने पुत्र नूं जदों गिरफ्तार करके लैके तोड़ के चले ने। कुछ एक विद्वानां दी ऐसी भी है, सतवीर सिंह ने लिखिया, पर सतवीर सिंह दी लिखतां विच एक बड़ी वड्डी मुश्किल आउंदी है, उह किसे अपनी बहुती वारी यह नहीं दसदे भी यह पिछोकड़ मैं किहड़ी किताब चो लिया, तां करके सतवीर सिंह दी मुश्किल बनदी। वैसे सतवीर सिंह ने लिखिया है भई उस वेले दी भैण नूं भी गिरफ्तार किया गया सी, पर कुछ एक लोगों ने उहदे बदले सोना दे के उहनूं छड़ा लिया सी, क्योंकि भाई तारू सिंह दा अपने इलाके च मिलवर्तन बहुत चंगा सी। गल वक्री जिहड़ी मैं करनी चाहुंदा, जदों उहनूं भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार करके लैके चले, मां दरवाजे कोल खलोती है, मां दी अख विच एक भी अथरू नहीं आया। मां ने अपने पुत दी पिठ थापड़ी, कहन लगी पुत वे तेरे कोलों कोई घर दे हालात छुपे होए नहीं, तैनू कली कली गल दा पता है, तेरा बापू छोटी उम्रे चढ़ाई कर गया सी, मैं जिवें किवें अपनी जिंदगी दे दिन कटदी रही, ते हरेक मां नू इको एक आस हुंदी कल मेरा पुत वड्डा होवेगा ते मैं सुख चैन दी रोटी खावांगी। पर इस वेले जालम ने वक्त इहो जिहा बना दिता, तू मां दीआं अखां दे सामने गिरफ्तार होके चले आ, पुत वे एक गल मेरी अज तू पले बन लमी, तेरी मां किसे दे घर भांडे मांज लवेगी, पर चेता रखी ए सिर उठा के तुरेगी, पुत वे चेता रखी तेरी मां किसे दे घर गोहा कूड़ा कर लेगी, किसे ने घर दियां सफाइयां कर लेगी, लेकिन तेरी मां जमाने अगे सिर उठा के तुरेगी। पुत वे मेरी रोटी दा फिकर ना करी, मेरे बुढ़ापे दा फिकर ना करी, तू एक कृपा करी, तू एक गल चेता रखी, तू अपनी मां नूं ओना ही चंगा लगेगा, लेकिन पुत किते गलती ना कर आमी, तेनू जालम ने बड़े तसीहे देने ने, तेनू जालम ने बहुत कुछ तसीहे दे दे के मनाउणा, पर पुत वे किते सिक्खी नूं दाग ना लाके आ जाई, जे तू सिक्खी नूं दाग लाके आ गया तेरी मां जिंदगी भर कदे सिर ऊंचा करके नहीं तुर सकेगी। मां दे कोल खलोके पुत ने आशीर्वाद लई, कहन लग्या मां मैं कोशिश करांगा मेरा ध्यान करे घर विच ना आवे, मैं गुरु चरणा विच ध्यान जोड़ के रख सका। तुरिया अगे राह विच भैन खलोती है, भैन ने गलवकड़ी पाली, रो पई।

तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां विच सुभायमान सतसंगी प्यारियो, करो कृपा असी संबख्शो। अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछलेरे दिनां विच आपां विचार दी सांझ पाई सी, जस पत राय दा कतल होया, उस पापी नूं नरक सधारिया। लख पत राय बुखला उठा, कानू बाण दे शंभ विच लुके सिखां दे लई उन्हें फौजां लेके घेरा पा लिया। एक पासे फौजा ने, एक पासे पहाड़ी है, उदे उत्ते प्रबंध कीता होया, तीसरे पासे रावी है, चौथे पासे इस पापी ने आप अग ला दिती जंगल नू। गुरु के सिख जिवें किवें हो सके विचों कुछ इक निकल भी गए, पर बहुते सिखां दा इत्थे शहादतां दे जाम पीते गए। करीब इतिहास इह गल आखदा है, इको दिन विच 10,000 ते नेड़े सिख जिहड़ा ओह शहीद होया, कुछ 7,000 दे नेड़े उत्थे ही शहादतां दे जाम पीते, ते 3,000 पकड़ के लैके गया नखास चौंक लाहौर दे विच, इत्थे शहादतां होईयां। इस दे मगरों लखपत राय पकड़िया जांदा है, क्योंकि दोनों भरावां दा जंग हुंदा है, यहिया खान दा ते शाह नवाज दा, दोवें जकरिया खान दे पुत्तर ने। उहदे दरमियान यह लखपत राय यहिया खान भज जांदा है, उहनूं पकड़िया जांदा है, वैसे पकड़ के जेल विचों भज जांदा है, लखपत राय नूं बुरी मौते मारिया जांदा है। इह इतिहास आपां कल रोज विचारिया सी, किवें गुरु के सिखां ने औखे वेले बेअंत उस रावी दे किनारे किनारे जदों गए, इहो प्रतीत हुंदा जिवें लहू दे अथरू रो रिहा होवे इतिहास, उदों पैरां तों तुरिया नहीं जांदा, घोड़े साथ नहीं देंदे, ते अपने कपड़े पाड़ पाड़ के उन्हां ने अपने पैरां थले लपेट लपेट के उह जिहड़ियां विच छाले हो चुके सन उबले होए रेते विचों ते उह पार जांदे ने। इथे तक इतिहास की लड़ी आप कल विचारी सी, अज उस तो अगे सांझ पाउणा चाहना। हुण जदों यहिया खान का भी प्रभाव घट गया, क्योंकि उते भज गया, लखपत राय भी मारिया गया, उदों

खान सरफराज खान इथों का हाकम सी। उस सरफराज खान नू गुरु के सिखा ने मार मुकाया ते ओ बचे अगे जाके मरिया। मैं इतिहास छोटा करना चाहना है। ओनू पकड़ लिया सी ते ओ कहन लगे भी तुसी किसे तरह मैनू माफी दे सकदे हो। उन्हें आख्या भी तू खाली हत्थे तो निकल जा, खाली हत्थे तो निकल जाओ। निकल गया, अगे बुरी मौत मर गया, गल बखरी है। मारिया गया पर इस गल विचो हुण ए गल दा पता लगदा कश्मीर विच बैठे सर बुलंद नू, सर बुलंद खां कश्मीर दे विच बैठा है। 1764 दा जिक्र चल रहा हूं तुहाडे नाल। ओनू पता लग्या भी गुरु के सिखां ने सरहंद भी अपने अधीन कर ली, गुरु के सिखां ने मुरिंडे नू भी अपने अधीन कर लिया, मलेर कोटले नू भी अपने अधीन कर लिया, कसूर दे इलाके विचों जालमां नू कढ उस्मान खान नू मार भगाया। इतियाद कोठे अपनिया मन मर्जिया करने की बजाय यह सिख जिन्हों मैं उजाड़ के रखिया होया सी वह एडा वड्डा सिर चुक बैठे ने। जदों इस गल का उन्होंने पता लगे सारी गल का तो इधरले पासे कश्मीर का हाकम सर बुलंद 12,000 दी फौज लेके इस रोहतास के इलाके वल तुर पिया। रस्ते विच अटक दे किनारे इन्हां दी आपस विच टक्कर होगी चढ़त सिंह दी ते नाल इस पापी सर बुलंद दी। जदों इह टक्कर होई उदों इन्हां ने इन्ना कु हट के जंग लड़िया। वह जिहड़ा सर बुलंद सी वह कैदी बना लिया, जिहड़ियां फौजां सन वह भज गईआं। हुण जदों सर बुलंद नूं कैदी बनाया, हुण ध्यान दिओ जो मैं बेनती करा यह सर बुलंद कौन है? यह अहमद शाह अबदाली का सका चाचा है जिहड़ा वक्त दे हाकम है। देखो दुनिया उन्हू किन्ना मन रही है। अहमद शाह अबदाली का सका चाचा है सर बुलंद। उन्हू पकड़ के उस वेले चरत सिंह ने रोहतास के किले विच कैदी बना लिया और बकायदा कहा भाई तेनू सजना असी छड देना सी। जिवें बाकी हाकम खिमा मंग के चले जांदे ने, खालसा छड देंदा कोई वड्डी गल नहीं, पर तेनू नहीं जे छड़ना। वह पुछण लग्या क्यों? कहण लग्या अहमद शाह अबदाली नू दसना चाहुंदा भी उहदा जिहड़ा चाचा सी ना सका उह सिखां दी कैद विच रहा है। देखो किड्डा माण वाला इतिहास है, पर असी जाण नहीं सके। बिचो एक निकी जी गल होर कह दिया, मैं फिर इत्थे बंदे आउंदा, समा भी सीमा च। हरी राम गुप्ता एक इतिहासकार होया, उन्हें बहुत प्यारियां गल्लां लिखियां ने। उन्हें एक बचन लिखिया बड़ा प्यारा, कहन लग्या सिखां दा दुखांत रहा है। दसां पातशाहियां दे जीवन बारे भी बहुत लोगों ने गल की, करनी भी चाहिए, मेरा मतलब यह नहीं। और उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने काल की बहुत गल की, पर लेकिन जेड़ा समा 1716 तो लैके 1792-90 तक का समा है ना, ओ इतिहास ने बहुत दर्द हंडाए और ओयो शहादत भरिया होया इतिहास सानू बहुत सिख्या दिंदा, अडोलता की दात दिंदा, लेकिन ओयो इतिहास असी कदे नहीं भोलिया। इस इतिहास बारे बहुते लोगों ने गल नहीं की। कहिंदा जितनिया एनिया कुर्बानियां और एने संकटा एनिया मजबूरिया के सामने सिख जिता हासिल करते ने। कहन लगे इन्होंने ओयो इतिहास अज तक दुनिया नू नहीं दसिया। जे दुनिया नू दसिया हुंदा ते किसे नू कहन दी लोड़ ना पैंदी भी तू सिख रह जा सिख बण। लोग आप मिन्नतां करदे। उस गल वल चला हुण। उहने रोहतास के किले विच सर बुलंद कैदी है ते उन्हें चरत सिंह नू बुलाया। और देखो सिखां दी खासियत, मैं बार बार बेनती करा, उन्होंने उन्हू आख्या भी देख तू हाकम है, असी तेनू कैदी रख ले भावे, पर तेनू शाही कैदी वांगू रखांगे क्योंकि तू राजनीतिक कैदी है, तू अपराधी कैदी नहीं है, तेनू कोई सजा नहीं असी देनी। शाही कैदियां वांगू रखिया। उन्हू बतन हुंदा सी जे तेनू कोई चीज चाहीदी होवे जां तू कोई गल करनी होवे तू बुला सकना। उन्हें सुनेहा देकर चरत सिंह नू बुलाया। चरत सिंह कहन लग्या भी मैं तेरे नाल दो गल्लां करनियां। कहन लग्या करो।